0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। खेल खेल खेल माटी में होली खेल, गाल में गुलाल है न जुल्फों में तेल।
2: अरे अपनी भी जवानी क्या है सुनते है वार।

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग जा भग भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी, हरेगा विदेश बाबू बहिया तिहारी। थाम थाम थाम गोरी जरा थाम, नहीं लुट जाएगी राम का।

0: लाइका गोल्ड। आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
1: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कहे न कोई। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर। कथना कथी ना आवे तोट, कत कत कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच।

सो मैं विसर न जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना

मन कोई मने सुध होवे मन बुद्ध मने सगल पवन की शुद्ध मने मोह चोटा ना खाए मने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मने मार्ग ठाक ना पाए मने पत्स्यों प्रगट जाए मने मग ना चले पंथ मने धर्म सेती संबंध

लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बोला खोएं लख होवें लखवीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश एत

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
0: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट. क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ. द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एम्बिशियस 11-11 इनिशिएटिव एमिंग टू कंप्लीट 11 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स इन जस्ट 11 मंथ्स फीचरिंग व्यूज, ओएसिस, ओशंस, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
2: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026.
4: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
3: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न.
4: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो.
3: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी.
4: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर व्हाइट हार्ट रोड लंदन SE18 1DG.
3: टिकट्स बुक करो segalondon.co.uk.
4: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा.
5: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
6: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
5: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
7: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
8: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
9: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे.
10: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: लाइका रेडियो नाउ इन मोर प्लेसेस देन एवर बिफोर. बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, हडर्सफील्ड.

0: Breakfast with Dee Prancher.
1: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
2: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
1: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
2: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
1: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: चनिया चोली रेडी, रेडी तो बस अब आपकी कमी है।
6: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
5: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
6: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैटसोमा।
5: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
7: Sunshine, skyscrapers and souks.
8: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
7: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
8: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
7: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
8: Southall Travel. At all protected.

0: सबसे निराला
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: Breakfast with Deep Rancher.

0: London. Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London.
1: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 073-00-99-8823.
2: गेम छो लंदन, तैयार छो? अब बस कुछ दिन बाकी. एसकेएलपीसी प्रस्तुत करते हैं बैकस्टेज सिबलिंग्स लाइव. भजनों की धुन पर झूमो, गाओ और साथ मिलकर रंग जमाओ. 9 अक्टूबर रात 8 बजे और 10 अक्टूबर शाम 7 बजे SKLPC UK इंडिया गार्डन्स वेस्ट एंड रोड. तो चलो साथे मणि ने गाइए. बुक करें SKLPC.com/BSS. रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
3: Share festive sweetness with Haldiram's.
4: Kaju Katli, Coconut Barfi, Gulab Jamun, Mysore Pak, Milk Cake, Rasgulla and more. A taste of home.
3: Shop at HaldiramUK.com or at your nearest grocery store.
5: Haldiram's.
6: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड.
1: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स कैफेज केटरर्स फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज. ऑर्डर योर फ्री हेरल्ड कैटलॉग टुडे. कॉल ऑन 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026.
3: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
2: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न.
3: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो.
2: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी.
3: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर व्हाइट हार्ट रोड लंदन SE18 1DG.
2: टिकट्स बुक करो segalondon.co.uk.
3: सेगा नवरात्रि, भक्ति मस्ती और गरबा.
4: You have one new voice message. New message.
5: Hi Jess, it's Kate, your midwife. I just wanted to follow up on booking your flu vaccine. Flu's always pretty awful, but can be even worse when you're pregnant. Please give me a call back.
6: Flu can put both you and your baby at increased risk of severe complications, including early labour and low birth weight. But the vaccine gives you both the best protection from flu. Speak to your midwife, GP practice or pharmacist. Stay strong. Get vaccinated.
7: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से पहली से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से। स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर 22 पामस्टन रोड हैरो HA37RR। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678।
2: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
3: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9-18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL।
2: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
3: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
2: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
4: Sunshine, skyscrapers and souks.
5: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
4: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
5: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
4: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
5: Southall Travel. At all price. Protected.
6: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
7: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.

0: Mabster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
3: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड. मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 टू.

0: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका? सब बढ़िया? Have you already had your चाय की प्याली or your cup of coffee, whatever? आज थोड़ी सी ठंड है, right? And maybe, you know, during the afternoon the weather gets a little better, but we can't complain, right? और करनी भी नहीं चाहिए, कंप्लेन से कुछ मिलता तो है नहीं. कंप्लेन की तो बहुत सारी जगह होती है, बट कुछ एंटरटेनमेंट की भी जगह होती है. एंड आई एम गोना लिटिल बिट टॉक अबाउट बिग बॉस. आई डोंट नो कितने लोग हैं जो बिग बॉस 20 के फैन हैं. और बिग बॉस जो है शिद्दत से आराम से बैठ के सब कुछ मतलब एक साइड रख के देखते हैं. आई एम श्योर देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो कि बिग बॉस फैन होंगे, और उनमें से मैं भी एक छोटी सी फैन हूँ. बट यू लेट मी नो कि आप बिग बॉस के फैन हैं कि नहीं. और स्पेशली मैं वीकेंड के वार की तो डेफिनेटली फैन हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी बेकार कंटेस्टेंट हो या जितने भी ड्रामेटिक कंटेस्टेंट हो या जितने भी अच्छे कंटेस्टेंट हो, सबकी क्लास सिर्फ सलमान लगाते हैं. आप लोग के भाई मेरे भाई नहीं है वो. इज दैट राइट? बट हाँ, इस वीकेंड होने वाला है बहुत सारा धमाल बिग बॉस 20 पे, क्योंकि जो काजी तौकीर जी हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके पड़ लगे और उड़ने लगे हैं. यू नो ही वॉज गोइंग वेरी वेरी नाइसली, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी गेम खेल रहे थे. बट अब लगता है, वो कई बार कहते हैं ना कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो कॉन्फिडेंस में बदल जाता है. थोड़ा सा ट्रैक जो है वो इधर उधर कर रहे हैं और उसी के प्रोमोज भी आ रहे हैं. उन्होंने कुछ गलत कह दिया था करने का मान को, जो कि बिल्कुल बेसिकली डीवा हैं, कुछ बोलती ही नहीं है, बस अपने स्माइल और अपने एक स्टाइल से चलती रहती हैं. वेल, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. आप मुझे बताइए कि आपको बिग बॉस 20 कैसा लग रहा है? इज़ देर एनीथिंग स्पेसिफिक यू लाइक अबाउट बिग बॉस 20, या कोई ऐसी चीज़ है कि यू नो कुड हैव बीन बेटर? वैसे तो बहुत अच्छा डाल रहा है, जो भी कहिए. सलमान खान जहाँ पे जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होने ही वाला है. And who's your favorite contestant? Because this time it's actually very difficult to think about ki favorite contestant hai kaun, kyunki kabhi koi bhi abhi tak mujhe nahi lagta koi itna outshine kar paya hai. Am I right or am I right? This is Sheena.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 126.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online, or phir simply SBI YONO mobile app download kijiye. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.

0: Co food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
0: लंदन, get ready for an unforgettable night.
4: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
0: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
4: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
0: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
4: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
0: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
5: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
6: Lights on, shutters up, staff ready.
5: But today's customers don't start on the high street.
6: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
5: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
6: They walk into your competitors.
5: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
6: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
8: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
7: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
9: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
10: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
11: Have you noticed the way fans shout at football matches?
12: Oh, wake up!
11: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
13: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
14: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: बोलो तो मर जाए। वेरी वेरी क्लासिक मूवी अमर अकबर एंथनी, बहुत ही खूबसूरत सी मूवी। एंड दिस मूवी हैड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये जो गाना है चार लेजेंड ने कलैब करके गाया था, और बॉलीवुड की हिस्ट्री में लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना गाया था। इन सब लोगों ने इकट्ठे मिलके ये गाना गाया था, दे नेवर पेड अस, यू नो प्रोबेबली चारों के चारों फिर उसके बाद कभी ऐसे नहीं आए, और गाना डेफिनेटली सुपर डुपर हिट था, एंड सो इज द मूवी, इजंट इट।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.
0: चलिए चलते हैं यादों की तरफ, वो होगा नेक्स्ट आवर में, बट लेट्स प्ले दिस ब्यूटीफुल गाना यादों की बारात।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: This is Laika.
2: And yes, you're listening to Sheena on Laika Gold. Hope you're enjoying the show. और सैटरडे की सुबह आप लोगों के साथ और मेरा साथ राइट अंटिल 1 o'clock. और मैं ये कहना चाह रही थी, काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं और जब वो ट्यून इन करते हैं तो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं रितु आएगी, तो वो सीधा लिखते हैं हेलो रितु, हाउ आर यू, और फिर बाद में जब मैं बोलती हूँ ओ दिस इज शीना, तो फिर वो लिखते हैं सॉरी अपोलोजीज. अरे भाई अपोलोजी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ट्यून इन किया, आप इन्जॉय करिए बस, और ऐसे ही अपना साथ देते रहिए हमारे साथ. एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द मैसेजेस, और बड़े सारे स्माइली आ रहे हैं. तो ये सॉरी वॉरी नहीं चलता, वो कहते ना दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, प्लीज़ उतना ही रखिए आप. तो हम तो हैं आपके साथ. और टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट गाना, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक, और इसकी खूबसूरती ये है कि हमेशा आपको बचपन की याद दिलाता है, और ऐसे गाने डेफिनेटली चाहिए लाइफ में, कुछ जो कुछ सिखा के जाते हैं. रिमेंबर लकड़ी की काठी, एंड दिस इज़ फ्रॉम द क्लासिक मूवी मासूम, और गाना भी बहुत मासूम. चाइल्ड आर्टिस्ट तो डेफिनेटली बहुत मासूम थे, उर्मिला मातोंडकर, जुगल हंसराज, हंसराज जिन्होंने डेब्यू किया था, और बाद में तो आई एम श्योर वी ऑल नो द स्टोरी, कहाँ के कहाँ वो चले गए अपना बॉलीवुड की इंडस्ट्री में. बट येस, इसके जो प्लेबैक सिंगर है ना, वो प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर नहीं ले गए थे, क्योंकि गुलजार जी को ये लगा गया था कि हमें एक फ्रेश आवाज़ चाहिए जो कि बेसिकली सुनी भी ना हो, थोड़ी सी यंग हो, थोड़ी सी अनट्रेंड चाइल्ड आर्टिस्ट हो, और इसी के साथ ही गाना गाया गया था. बहुत ही खूबसूरत सा गाना. लेट्स हियर इट टुगेदर, लेट्स गेट इनटू द जोन ऑफ बीइंग, यू नो, बचपन की यादें, चाइल्डहुड हम सब की होती हैं, रहना तो उन यादों को चलिए दोबारा से रिवाइव करते हैं, दोबारा से इंजॉय करते हैं. दिस इज शीना,
1: ये है लाइका गोल्ड, द रितु शर्मा शो विद रितु शर्मा ऑन लाइका गोल्ड ग्रेटर लंदन.

आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है। Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Lyca Gold and Lyca Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: वफादार है। हप हप खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
0: माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
1: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
0: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
1: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
0: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
2: I can't wait for our holiday. Sun, sea, no work.
3: Same, but how are we supposed to use our phones abroad? Roaming costs a fortune.
2: Not with SimZee. You get data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And I can keep my number for WhatsApp and bank OTPs. Exactly. Plus, it's flat rate, so no bill shock and you're ready in just 3 minutes.
2: Brilliant. And there's 10% off with Roam Free 10.
3: SimZee, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzee.com. Terms apply.
4: Leica Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइका गोल्ड.com पे।

0: बहुत ही खूबसूरत सा गाना किशोर कुमार की आवाज में, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, फ्रॉम द मूवी याराना। स्टे ट्यून, दिस इज शीना और बहुत सारी बातें राइट हियर ऑन लाइक अ गोल। दिस इज शीना।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. This
1: is Laika. And yes, बहुत ही खूबसूरत सा गाना, मैं पल दो पल का शायर हूँ. और ये बहुत ही मास्टरपीस गाना था जो कि यश चोपड़ा की फिल्म 1976 की क्लासिक कभी कभी का बहुत ही खूबसूरत सा गाना है. और इसको लिखा था साहिर लुधियानवी ने, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो गाया था लेजेंडरी मुकेश जी ने. और एक ये टाइमलेस एंथम सा जो है बन गया है. यू नो, एक इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में मैं जब पढ़ रही थी, यू नो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और फैसिनेटिंग सी बात ये थी, जो एम एस धोनी है, उन्होंने जब अपनी फेयरवेल की थी, एंड दैट वॉज बैक इन आई थिंक 2020 में, तो जब उन्होंने, महेंद्र सिंह धोनी ने यही गाना यूज़ किया था टू अनाउंस हिज अनएक्सपेक्टेड रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से. और बहुत ही खूबसूरत सा एक वीडियो है उनका जिसमें ये गाना जो है बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ. और इतनी ब्यूटीफुली इसकी जो बेसिकली यू नो वर्ड्स हैं वो सिंग कर रहे थे धोनी जी की फेयरवेल पे, कि बेसिकली आप एक तरीके से इस गेम के लिए खेल रहे हैं और अब नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो टेक ओवर कर जाएगी, एंड इट इज़ ऑल अबाउट दैट, राइट. और ये एक ऐसा गाना भी था जिसने ब्रेक थ्रू किया था किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन के नॉम को, क्योंकि ये गाना बेसिकली गाया था मुकेश जी ने, एंड दैट वाज बैक इन 1970. किशोर कुमार ही सारे गाने बाय डिफॉल्ट जो है अमिताभ बच्चन के गा रहे थे. हाउएवर, जो कि म्यूजिक कंपोजर थे, उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड सा और नॉन ट्रेडिशनल से चॉइस सेलेक्ट किया मुकेश जी को अमिताभ बच्चन की आवाज़ के साथ, एंड वी ऑल नो रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट. बहुत ही खूबसूरत सा गाना, होप यू एंजॉय इट. पहले आपके पहले के जितने भी गाने थे, देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ यू नो प्रोबेबली सम लर्निंग फ्रॉम दैट. और ऐसी लर्निंग जो हैं हम आपको बताते भी रहेंगे, और अब इतनी पुरानी पुरानी मेमोरीज को रिवाइव करते रहेंगे. तो सुनते रहिए लाइका गोल्ड,
2: रिची शर्मा ऑन लाइका गोल्ड.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबर.

0: Jamaica.
1: And yes, it's all about the lovely, lovely time. और बहुत ही आज इंटरेस्टिंग डे भी है, और इसके अलावा बहुत सारी बर्थडे सेलिब्रेशन भी, एनिवर्सरीज भी हैं, बट अभी के लिए इट्स अ बर्थडे सेलिब्रेशन. हाँ जी, हंसा बहन पांड्या और ईशान का बहुत बहुत स्पेशल डे, इट्स अ हैप्पी बर्थडे. और वो

0: प्रोग्राम भी सुन रहे हैं। तो नरेंद्र पाठक जी कह रहे हैं कि मेरी तरफ से, पाठक फैमिली की तरफ से प्लीज़ उनको विश कर दीजिए। तो डेफिनेटली हैप्पी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम लाइका टीम और खूब सारा इन्जॉय करिए। एंड यस, गुड मॉर्निंग जी, अभी तो आफ्टरनून का टाइम हो गया, इतने सारे लोग गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेज रहे हैं। हाँ, देयर स्टिल 10 मिनट्स टू गो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और सारे लोग जो है खाने पीने की फोटो भेजे जा रहे हैं। एंड आई एम स्टिल वंडरिंग, लाइक आई नो इट्स द ब्रंच टाइम कमिंग सून, बट ये अच्छा नहीं लगेगा राइट, कि आप खाने की फोटोज़ भेजते रहिए एंड देन आपके पास, मेरे पास कुछ खाने का ना हो, इज़न्ट इट। और बहुत सारी बातें आपके साथ करूँगी। और यस, इन द नेक्स्ट आवर वी विल डू यादें सेक्शन, जिसमें हम बहुत ही खूबसूरत सी याद और एक बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। एनी गेसेस, किसका बर्थडे आज? तो इतना बस बता सकती हूँ, उनकी फिल्मों में एक जान थी और एक बेसिकली जज्बा था, और वो एक डायरेक्टर हैं। इतना ही मेरे ख्याल से बहुत होगा आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप लोग गेस कर ही लेंगे, और मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत समझदार हैं। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस, ऑल योर प्यार। और यस, ये इससे पहले जो मैंने गाना प्ले किया था, हम दम मेरे मान भी जाओ, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी मेरे सनम, बहुत लोगों को पसंद आया है। है ही ऐसी बात इन गानों में जो आपको कहाँ का कहाँ ले जाती हैं। तो इन्जॉय करते रहिए मेरे साथ राइट अंटिल 1 o'clock।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: हाँ जी भाई, looking at the currency rate today, one pound is going to fetch you 127.28 Indian rupee, 366.37 Pakistani rupee, 85.44 Afghan Afghani, 162.79 Bangladeshi taka, 437.74 Sri Lankan rupee and 1.32 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold in pounds is trading at 100 pounds and 60 pence per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
3: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
4: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
5: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
6: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300099

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
2: गुरु गुरु,
4: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
5: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र.
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
6: टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
7: Sunshine, skyscrapers and souks
8: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
7: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
8: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208-843-4444 or visit southalltravel.co.uk now.
7: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
8: Southall Travel. At all.

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: So £1 in British sterling today can get you up 226.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, ya phir online aur ya phir SBI Yono mobile app pe. Terms and condition do apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: लाइका गोल्ड
3: ट्रेवल हब वर्ल्ड.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड.com
4: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड
4: Visit travelhubworld.com.

0: ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं. आर्टिस्ट ऑफ द वीक दिस वीक इज नन अदर कैफी आज़मी. बहुत ही खूबसूरत सी ये गाना है और सभी जानते हैं उनको. और ही वॉज डेफिनेटली अ लेजेंडरी. उर्दू की पोइट्री करते थे और काफ़ी सारे गाने उन्होंने लिखे भी हैं. कुछ काफ़ी सोलफुल गाने हैं, अर्थ के गाने भी उन्होंने ही जो है लिखे थे. एंड सोशली बेसिकली एक इंडियन वो कहेंगे हिंदी की सिनेमा में उन्होंने डेफिनेटली हिस्ट्री बनाई थी. और ये बहुत खूबसूरत सा बेसिकली गाना है जो कि रफ़ी जी ने गाया और सब लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं इस गाने को. और इस गाने के पीछे ये है कि ये मूवी जो थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी. हीर रांझा मूवी का ये गाना था और ये गाने में ना एक स्पेशल चीज़ हुई थी क्योंकि ये जो कैफ़ी आज़मी जी थे इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था इस पूरी फिल्म के साथ. क्योंकि कैफ़ी आज़मी जी ने इसकी इस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट भी लिखी थी इस मूवी की और जितने भी डायलॉग्स थे वो भी लिखे थे एक शायराना अंदाज में. और वो शायराना अंदाज उनके गानों में भी था और उस फिल्म में भी था. एंड यस, नाउ इज द टाइम यादों की बात करें तो यादों में आज बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया जाए, क्या कहते हैं आप लोग? और बहुत सारे लोगों ने गेस भी कर लिया किसका आज बर्थडे. भाई आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेरी इससे तो बहुत ही ज़्यादा है डेफिनेटली. और आज 3rd of October है और आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म मेकर का, जेपी दत्ता जी का, जिनका नाम सुनते ही सबसे पहले हमें याद आती हैं उनकी लार्जर देन लाइफ फिल्म्स, जिन स्टोरीज में करेज था, सेक्रीफाइस, फ्रेंडशिप, लव और पेट्रियोटिज्म तो डेफिनेटली ऑन द पीक था और है भी. उन्होंने हमें गुलामी, क्षत्रिय, बॉर्डर, रिफ्यूजी, LOC, कारगिल और फिर बॉर्डर 2 जैसी फिल्में भी दी हैं. और उनकी फिल्मों की एक खास बात है, वो सिर्फ बड़े सेट्स और बड़े बैटल्स नहीं दिखाते, उनकी स्टोरी में इमोशंस भी बहुत स्ट्रांग होते हैं. और आज उनके बर्थडे पर हम उन्हीं के कुछ एक या दो मेमोरेबल फिल्म के सॉन्ग के जरिए उनको याद करेंगे. और जब जब जेपी दत्ता जी की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मन में आ जाते हैं और उसके बाद हम सब झूम पड़ते हैं. और शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गाने से. इस गाने में ना एक दिल है, एक जाँ है जिसके बारे में डेफिनेटली आपको बताने वाली हूँ. सोनू निगम और रूप कुमार राठौर की आवाज़ में और म्यूजिक अनु मलिक का. आई एम श्योर आप सब लोगों को गेस कर ही लिया होगा ये कौन सा गाना है, राइट?
1: ये है लाइका गोल्ड. Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is Laika.
2: और एक खूबसूरत सा गाना संदेश ये आते हैं सोनू निगम और रूप कुमार राठौर की आवाज में था. और इस गाने की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ऑफकोर्स एक पेट्रियोटिक गाना तो है ही है, बट ये एक्चुअली गाना घर की याद बहुत ज़्यादा दिलाता है. एक सोल्जर जो बैटलफील्ड में है लेकिन उसको घर की याद आ रही है, माँ की याद, फैमिली की याद और अपने लोगों की याद, एंड दैट्स व्हाट द सॉन्ग डिपिक्ट्स अबाउट. और शायद इस वजह से ये गाना इतने सालों बाद भी हमारे दिल को छू जाता है. इज ऑलवेज समथिंग मैजिकल अबाउट दिस गाना, इजंट इट. हम सबकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिनसे दूर रहकर हमें उनकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा समझ में आती है. कभी कभी डिस्टेंस हमें बताता है कि हमारे अपने लोग हमारे लिए कितने प्रेशियस हैं. और जेपी दत्ता जी ने डेफिनेटली इस गाने में वो दर्शाया भी था. इट्स नॉट ईजी रणभूमि पे भी होना और डेफिनेटली कहीं पे दूर भी होना, एक ही बात है नहीं, जब हम अपनों को मिस करते हैं. तो बहुत ही खूबसूरत सा बेसिकली उन्होंने समा बांधा था इस मूवी में. एंड दिस मूवी वॉज अ सुपर डुपर हिट, एंड देन बॉर्डर 2 भी आई. एंड बॉर्डर 2 वॉज ऑल्सो रिसेंटली काम किया था, मतलब उतना ब्लॉकबस्टर तो नहीं, बट आई वुड से इट वॉजंट दैट बैड, इजंट इट. और यस, हम एक और गाना प्ले करेंगे जे पी दत्ता जी के बर्थडे के लिए, बट यस ये गाना डेफिनेटली संध्या आपके लिए, बिकॉज शी इज़ अ डाई हार्ड फैन ऑफ सोनू निगम. वो कह रही मुझे प्लीज़ एक सोनू निगम का गाना तो डेडिकेट कर दो. तो चलिए ये गाना जो था आपके लिए था, संध्या से आते हैं, सोनू निगम को भी भिजवा देंगे आपकी तरफ से. दिस इज शीना ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो नेटवर्क.
0: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
2: एंड यस, बहुत सारी जो है इवेंट्स भी हो रहे हैं. और सुनील ग्रोवर जी जो कि हसास आके लोटपोट करके हम सबको जो है बहुत ही खुश रखते हैं, सो कैच दी कॉमेडी जीनियस सुनील ग्रोवर लाइव इन लंदन एट दी ओवर अरेना वेम्बली ऑन थर्सडे 29th ऑफ अक्टूबर एंड लेस्टर, एंड दैट्स ऑन सैटरडे 31st ऑफ अक्टूबर. टिकट्स एट AXS, Eventbrite एंड टिकट मास्टर. एक्सक्लूसिव रेडियो बार एंड वन एंड ओनली लाइगा रेडियो नेटवर्क.
0: दिस इज रितु शर्मा. Tune in to Laika Gold, London's number one Asian retro station on the Laika Radio mobile app.
2: Another song from J.P. Dadda Ji ki movie se, Kshatriya movie se. Bahut hi blockbuster movie thi. Aur iski star cast ke baare mein to jitna kaha jaye utna kam hai. Dharmender, Vinod Khanna, Sunny Deol, Sanjay Dutt, Meenakshi Shadi, Raveena Tandon and Divya Bharati.

0: एंड दिस वॉज जेपी दत्ता की बहुत ही खूबसूरत सी मूवी. और ये सुनगी फिल्में हमेशा एक सिंपल सी बात बार बार याद दिलाती हैं, जिंदगी में चैलेंजेस जरूर आएंगे लेकिन हिम्मत, होप और अपने लोगों के साथ होना तो सफ़र बहुत खूबसूरत बन सकता है. और ये था आज जेपी दत्ता जी की यादों का सफ़र. और आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आज लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है, जस्ट रिमेंबर, कीप मूविंग ऑन, कीप बिलीविंग, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर भरोसा डेफिनेटली रखिएगा.
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ओल्ड ट्रैवल.
0: And when it comes to holidays, oh my God, I really want to go travel to Dubai without a heavy price tag. Southall Travel Affordable Dubai offers combines exclusive deals at selected partner hotels, जहाँ पे आपको direct flights मिलेंगे with Emirates from just £629 per person for 3 nights. Travel by 10th December. Call Southall Travel on 0208-843-4444 or visit southalltravel.co.uk.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is like a gold.
2: Travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on Travelhubworld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call Travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit Travelhubworld.com.
3: Travelhub.

0: tasty track of the hour sponsor by Coco Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: Like a gold.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: Looking at the currency update today, £1 is going to fetch you 127.25 Indian rupee, 366.3 Pakistani rupee, 85.33 Afghan Afghani, 162.75 Bangladeshi taka, 437.75 Sri Lankan rupee, 169.93 Kenyan shilling, 1.32 US dollars and 63.71 Mauritian rupee.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: Golden Pounds is trading at £100.60 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: Ye hai. Like a gold.
5: Hello there. My name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
3: And yes, it's a beautiful, beautiful Saturday afternoon. और आप लोगों का क्या प्लान है, क्योंकि आफ्टर 1 o'clock आएंगे अनुराग, बहुत सारे रागों को लेके, बहुत सारी बातों को लेके, अपने अंदाज में, बहुत सारे अच्छे म्यूजिक के साथ. उनका अंदाज अलग है, isn't it? मैं देख रही हूँ कि वो स्टूडियो में एंटर करने वाले हैं, आ रहे हैं अपनी चाल चलते हुए शाहरुख खान के स्टाइल से. अगर मुझे पता है वो रेडियो में नहीं होता तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्टिंग ज़रूर कर रहे होते. मत कहिएगा उनसे कि शीना ने ऐसा कहा था, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे. या सो येस, और लाइका गोल्ड पे बहुत सारी अच्छी बातें और मैंने आपके साथ की. लाइका नेटवर्क पे भी आप हमें, लाइका रेडियो के नेटवर्क पे भी आप हमें सुन रहे हैं. आप लोग इस सैटरडे की आफ्टरनून बहुत ही खूबसूरत जाए और इवनिंग भी जाए, और मैं आपको तो डेफिनेटली कल मिलने वाली हूँ. संडे स्पेशल होने वाला है. मैं हमेशा संडे को फंडे कहती हूँ, जबकि इस कंट्री में फंडे कोई भी नहीं होता है. हम हमेशा सोचते हैं कि एक दिन मिलेगा जब बिल्कुल आराम करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे, सिर्फ आराम से अपना यू नो चिलैक्स करेंगे. बट वो दिन कभी हो ही नहीं पाता है. वी प्लान टू डू ग्रोसरी, वी प्लान टू डू क्लोथिंग, वी प्लान टू डू यू नो ए बी सी डी थिंग्स, आइनिंग करनी है, खाना बनाना है, फलाना ढिमकाना, क्या क्या नहीं करना है, और जो जो करना है खुद ही करना है. सबसे बड़ा तो यही सी आप है, कोई नहीं आता हेल्प और सपोर्ट के लिए, एम आई राइट? पर ये सब चीज़ें भी हमें खुद ही करनी है. जब जिंदगी खुद जीनी है तो ये सब काम भी खुद ही कर लेने चाहिए ना. बट कभी कभी लगता है यू नो यू ऑन फ्राइडे यू वेटिंग फॉर कि हाई संडे आ जाए, संडे आएगा ना तो मैं बहुत चिल करूँगी. पर जैसे संडे जाता है और फिर ये लगता है कि ये भगवान ये तो बहुत जल्दी चला गया. मैं वेट कर रही थी मंडे टू फ्राइडे की वीकेंड आएगा, आई एम गोइंग टू डू दिस दैट, और अल्टीमेटली वो जो लिस्ट है ना वहीं की वहीं रह जाती है, वो टू डू लिस्ट, आप जिसको जो मर्जी लिस्ट बोली है. पर एक बात बोलूँ, अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान देना चाहिए. वो कहते हैं ना कि जो आपका हार्डवर्क है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, बट हर एक वीकेंड पे अगर आपको अपने सपनों को एक कदम और आप करीब लेके जा सकते हैं, अगर आप एक यू नो अपना इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और सोचेंगे कि मैंने ये चीज़ अच्छी की थी, ये चीज़ मैं और बेहतर कर सकता हूँ. नया दिन होता है, नई उम्मीदें होती हैं और नया वीक स्टार्ट होता है. दैट्स हाउ द लाइफ गोज़ ऑन. इधर बेसिकली मैंने यही देखा है कि यहाँ वीकेंड ख़त्म होता है तो अगली कहानी शुरू हो जाती है. तो बट अगर आपके कोई सपने हैं तो डेफिनेटली उनको जो है आपको ज़रूर अचीव करना है. तो सफलता का सिर्फ ना एक ही मंत्र होता है कि काम ऐसा करो कि बेसिकली आपको हर दिन ऐसा लगे कि हाँ एक नया अवसर है, एक नई उड़ान है. तो इसी उड़ान के साथ मैं तो उड़ूंगी अपने घर की तरफ और मैं आपको मिलूंगी कल सेम टाइम सेम प्लेस, कवरिंग रितु शर्मा और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार. दिस इज शीना सेइंग बाय बाय. हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते एक ब्यूटीफुल गाने के साथ. मैं आपको वापस फिर मिलूंगी कल सेम टाइम.
1: ये है लाइका गोल्ड.
6: Passports, tickets, kids' tablets.
7: All packed. But what about our phones? We'll need them for maps, WhatsApp, photos.
6: And checking in with grandma.
7: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
6: That's why I got Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
7: So we can keep our numbers for WhatsApp and bank OTPs?
6: Yep. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
7: Holiday sorted.
2: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से पहली से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से। स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर 22 पामस्टन रोड हैरो HA37RR। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678।
9: Sunshine, skyscrapers and souks.
10: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
9: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
10: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
9: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
10: Southall Travel. At all protected.
11: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
12: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
11: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
12: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
11: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
12: Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
13: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
14: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.

0: इसे कहते हैं मखमली आवाज का जादू। आशा दाई की आवाज में जवानी जाने मन फिल्म का, माफ कीजिएगा, ये गीत सुन रहे हैं। फिल्म का नाम है नमक हलाल और इस फिल्म का संगीत दिया था बप्पी लहरी साहब ने। काफी दिलचस्प किस्से इस फिल्म से जुड़े हुए हैं वैसे तो, हालांकि इस फिल्म के का स्क्रीन प्ले और फिल्म की कहानी तो जबरदस्त थी, लेकिन इस फिल्म के गाने भी एक से बढ़कर एक थे। बप्पी लहरी साहब ने क्या कमाल का संगीत दिया था, चाहे वो पग घुंघरू बांध मीरा नाची हो, आज रिपट जाए तो हमें ना उठाइयो, जवानी जाने मन तो आपने सुना ही है। और एक और क्लब सॉन्ग इस फिल्म में शामिल है जो कि परवीन बाबी के ऊपर ही पिक्चराइज किया गया है, रात बाकी बात बाकी। और खुद परवीन बाबी भी इस दोनों गानों को लेकर बड़ा कंफ्यूज थी, क्योंकि दोनों ही गाने बड़े ही प्यारे तरीके से फिल्माए गए थे और ख़ास तौर पर उस दौर में 80s के दौर में चमकीली सुनहरी सी ड्रेस उनके ऊपर खूब फब रही थी, बहुत जच रही थी और बड़ा ट्रेंड भी इस तरह के कपड़ों का हो गया था। हालांकि प्रवीण बाबी उस दौर में अब बीमारी से भी जूझ रही थी, लेकिन उसके बावजूद इस गाने में इतना अच्छा परफेक्शन उनकी एक्टिंग को लेकर आज भी लोग उनके इस गाने के दीवाने हैं और खुद आशा ताई के लिए भी उनके करियर का वन ऑफ द बेस्ट गाना जवानी जाने मन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के संदेशों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं वीकेंड वाली पाठशाला सुरों से सजी अनुराग के साथ। अगला गीत आशा ताई की आवाज़ में, लेकिन साथ में है रफी साहब, सुनाते हैं आपको थोड़ी देर में। और याद रखिएगा, गोल्डन राग और गोल्डन वर्ड भी आपका कर रहे हैं इंतजार, सुनते रहें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 126 रुपीज़ 50 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Honey, I was in the pet aisle and you'll never guess what.
3: What is that?
2: A gerbil. They were on sale.
3: Why would we want that?
2: They were doing 3 for 2.
4: Get the things you actually want for less. New lower prices are here to stay across storage, sofas, mattresses and more. Available online and at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Aashadai Rafi sahab ki awaaz mein neela aakash film ka ek khoobsurat sangeet. Main lyrics par dhyan de raha tha, gaur farma raha tha ki bhai kitni sahi baat kahi hai. Kuch log aise hote hain jinke paas jao to waqt ka pata hi nahi chalta. Aisa lagta hai ki waqt pankshi ki tarah ud gaya, gayab ho gaya. और कब घड़ी में सुबह के 8 से रात के 8 बज रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी है और वैसी ही कंपनी आप लोग की है, पता ही नहीं चलता ये 3 घंटे कितनी जल्दी से निकल गए. आपके संदेशों को पढ़ते हुए, उनका रिप्लाई देते हुए, उनका जवाब देते हुए. फिलहाल इस गाने में बहुत ही प्यारी तरह से पिक्चराइज किया, बाग में माला सिन्हा जी साड़ी पहनकर, बढ़िया सी प्यारी सी हेयर स्टाइल जो उस दौर में हुआ करती थी, और धर्म पाजी अपने रॉब में इस गीत को इन दोनों के साथ फिल्माया गया. अगला गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, लेकिन इस बात की आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि आप लोग कहीं गुम नहीं होने वाले हैं. बने रहिए हमारे साथ. सुपर संडे वाली महफिल तो कल होने वाली है, लेकिन आज है वीकेंड वाली पाठशाला.
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: भाई पहले ही कहा था गुम मत हो जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए आपको अगला गीत सुना रहे हैं आशा ताई और रफी साहब की आवाज में। बड़ा ही खूबसूरत सा गीत है, अक्सर सुनते हैं, लेकिन जब भी सुनो ऐसा लगता है यार सुनना जरूरी था इस गीत को। नया नया सा गीत है, ये आपको एहसास दिलाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों को ये गाना पसंद हो, महिलाओं को भी ये बड़ा पसंद है।
2: This is Like a Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London, the Like a Group.
3: मैं हूँ निशा नासिर, Like a Gold London और Greater Manchester में मेरी और आपकी मुलाकात Monday to Friday शाम 7 बजे से 10 बजे रात Big Show में जारी रहती है। Big Show सुनना भूलिएगा मत।

0: भाई आज के हम सफर हम हैं आपके ज्वेल थी फिल्म का ये गीत सुन रहे थे किशोर दा की आवाज में, और अगले गाने के बाद आप सबको जलानी होगी अपने दिमाग की बत्ती, क्योंकि आने वाला है अगले आवर नेक्स्ट आवर के लिए आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड। सुनते रहे वीकेंड वाली पाठशाला
1: ऑन रॉग विद करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: लेमफाई के जरिए 1 pound के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127.24, अफगानी 85.49, पाकिस्तानी रुपीस 366, बांग्लादेशी टका 162.75, श्रीलंकन रुपीस 437.74 एंड 1 US dollar 1.32।
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £100.60 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Feel good classics all day. This is Leica Gold.

0: भाई धीरे धीरे क्यों, आप जोर जोर से बोलिए, दिल का राज खोलिए, दिमाग की बत्ती जलाइए और हमें बताइए। अगले घंटे आप बताए और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड है हसीना। हसीना या हसी भी आप के लिए एक्सेप्ट करेंगे। हसीना या हसी, आप उससे रिलेटेड गाने हम तक पहुंचा सकते हैं। सुनते रहे वीकेंड वाली पाठशाला, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। बहुत ही प्यारा गीत।
1: This is like a gold.
2: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
3: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
2: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
3: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.
2: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
4: Watford में dinner plans, थोड़ा classy, थोड़ा देसी।
5: तो आइए Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
4: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala से biryani तक, fresh bread and refreshing drinks. हर bite में लाजवाब flavors और vibe बिल्कुल premium.
5: Friends, family या special night out, इसे यादगार बनाइए। Visit Vivek House Watford. Call 01923-227274. Book your table today. वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
7: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
6: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
7: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
6: कॉल प्रथम पटेल 0783830-2450।
8: तो माने या ना माने दिलदारा।
9: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
3: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
10: Sunshine, skyscrapers and souks.
11: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
10: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
11: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
10: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
11: Southall Travel. At all prices. Protected.
12: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
13: On RAG with Golden RAG.

0: एक हसीना थी एक दीवाना था, कर्ज फिल्म का ये प्यारा सा गाना था किशोर दा की आवाज में, और ये गीत हम तक पहुंचाया है हंसा वोरा जी, पंकज जी और सुमित जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। ये पहला गाना हमने बागी फिल्म से आपको सुनाया था, एक चंचल शोक हसीना। ये गाना हमने आपको गोल्डन राग की वीकेंड वाली पाठशाला की तरफ से सुनाया। बहुत सारे लोगों के दिमाग की बत्ती जल चुकी है, बहुत सारे गीत हमारे पास आ चुके हैं और हमने अपनी प्लेलिस्ट में उन्हें शुमार भी कर लिया है। तो बस दिल लगाकर सुनिए, हमारा साथ दीजिए वीकेंड वाली पाठशाला में। हर सीट को ऑक्यूपाइड रखिए और ये मत कहिएगा कि आपका गाना आज क्यों नहीं प्ले हुआ। जिसका नंबर आज है, आज उसका नंबर है, उसका गीत है, हम उसको सुनाएंगे। आप सबको उसे पसंद करना है क्योंकि सबकी फरमाइश का पिटारा कुछ अलग टेस्ट रखता है। लेकिन अगला गाना जो आज का आ रहा है, आज की थीम को ध्यान में रखकर, जो कि हसीना हसी, बड़ा ही प्यारा गीत है, और उसके बाद वाला जो गीत है उस गीत के लिए सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी फरमाइश का पिटारा खोला। सुनते रहिए वीकेंड वाली पाठशाला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 126.50 याद रखें। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: This autumn, don't miss the new Kia Sportage Storm, a limited edition of the UK's favourite family SUV, with thoughtful details that add an extra touch of luxury to every drive. Order yours by the 15th of December to get 5.9% APR representative and up to £3,000 PCP deposit contribution. Don't wait. Book your test drive today. Search Kia Storm.
3: Kia. Movement that inspires.
2: T's and C's apply. Kia Finance. To verify, visit kia.com/uk/favourite.
4: Leica Gold.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carry, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: લંડન હાલો ગરબે ગુમવા શ્રી 27 ગામ પાટીદાર સમાજ યુરોપ સાથે માણો નવરાત્રી ભારતના લાઇવ બેન્ડ સાથે 10-20 ઓક્ટોબર સાંજે 7:30 થી એટ 27 પાટીદાર સેન્ટર વેમ્બલી એડલ્ટ ટિકિટ્સ £10 16-17 અને 18 ઓક્ટોબરે £15 5-10 વર્ષના બાળકોને £5 અંડર 5 ફ્રી 11 રાતનો સીઝન પાસ £100 રેડિયો પાર્ટનર લાઇકા રેડિયો નેટવર્ક 27 ગામ પાટીદાર સમાજના ગરબા એટલે બેસ્ટ બેસ્ટ

0: feel good track brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: आशा दाई और रफी साहब की आवाज में तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत सबसे ज्यादा लोगों को आज सुनना था, लेकिन इससे पहले जो हमने आपको कर्ज फिल्म का गाना सुनाया तो इसमें एक नाम लेना हम भूल गए थे, उनका नाम है अहिर गुनोवा यादव जी। आपने भी इस गाने की को हम तक भेजा था, मैंने बाद में आपका संदेश पढ़ा, मैसेज पढ़ा, लेकिन इस गीत को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने दिल का पिटारा खोला है। ओ हसीना जुल्फ वाली, जल्दी से नाम लेते हैं। संध्या भावसर जी, उल्लाह जी, भरत गंगाराम साहब, मीना शाह जी, हंसा मिस्त्री जी, राजेंद्र सिंह कालरा, सोमिला मुंगुर, मधु जी, शकु जोशी, जया फ्रॉम ल्यूटन, संतोष जी, निर्मला जी और दिव्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पता तो चला कम से कम आज इस गाने को सुनने का आप सभी का है मूड। अगला गीत रफी साहब की आवाज में।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: तुमसा नहीं देखा रफी साहब की आवाज में ये गीत हम तक पहुंचाया था अर्जुन साहब, प्राची जी और संजय जी ने. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.

0: दर्द फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत किशोरदा की आवाज में हम तक पहुंचाया था प्रज्ञा जी और शांति जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। सुनते रहे वीकेंड वाली पाठशाला अनुराग के साथ। लाइका गोल्ड, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट एपिसोड नंबर 36, इनसाइड इन्फो फॉस्टर केयर। टाइटल इस बार का होस्टेड बाय रूबी रजा। अगर आपको पॉडकास्ट पूरी तरह से इत्मीनान से तसल्ली से सुनना है तो आपके लिए है प्लेटफॉर्म्स लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
1: This autumn, don't miss the new Kia Sportage Storm, a limited edition of the UK's favourite family SUV, with thoughtful details that add an extra touch of luxury to every drive. Order yours by the 15th of December to get 5.9% APR representative and up to £3,000 PCP deposit contribution. Don't wait. Book your test drive today. Search Kia Storm.
2: Kia. Movement that inspires.
1: T's and C's apply. Kia Finance. To verify, visit kia.com/uk/favorite.
3: ये है Like a Gold, Like a Gold
4: travelhubworld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley। Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com। Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com।
5: travelhub, best service with unbeatable price,
4: at all protected।
5: Visit travelhubworld.com।
6: 0730099-8823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099-8823।
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you

एक हंसी शाम को दिल में रखोगे। रफी साहब की आवाज में दुल्हन एक रात की फिल्म का ये गीत है और हम तक पहुंचाया इस गीत को बत्सला जी और

0: भाई बात तो बन गई नाजिया हसन साहब जी की आवाज में कुर्बानी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत 80s के दौर में एक तरह से इन्होंने हिला कर रख दिया था अपनी मुख्तलिफ आवाज को लेकर। लेकिन अब आवाजों को आपको चुनना है जो हम आपको देंगे गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस, जिसमें से आपको एक ऑप्शन को चुनना है और जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज्यादा वोट्स हमें रिसीव होंगे वो गीत बनेगा हमेशा की तरह भारी मतों के साथ आज का गोल्डन राग। ऑप्शन ए है, ध्यान से सुनिए, ये मौसम भीगा भीगा है, फिल्म का नाम है धरती। ऑप्शन बी है, सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, फिल्म का नाम है जवानी दीवानी। ऑप्शन सी है, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, फिल्म का नाम है कटी पतंग। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन तीनों ऑप्शंस में से आपको जो पसंद है उसे आप हमारे व्हाट्सएप की विंडो तक पहुँचाएँ और भारी मतों के साथ अपना अपना वोट दर्ज कराएं, कास्ट करते रहें। ऑप्शन ए है, ये मौसम भीगा भीगा है, फिल्म का नाम है धरती। ऑप्शन बी है, सामने ये कौन आया, फिल्म का नाम है जवानी दीवानी। और ऑप्शन सी है, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, फिल्म का नाम है कड़ी पतंग। और आप लोगों के पास अभी भी है आपके हाथों में आज के शो की डोर, इसलिए अपनी पतंग को उड़ाते रहें और अपने अपने ऑप्शंस बोर्ड की तरह कास्ट करते रहें। आप सुन रहे हैं वीकेंड वाली पाठशाला अनुराग के साथ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 126 रुपीज़ एंड 50 पैसे। आप अपने पैसों को ऐप ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11,
3: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
4: Danube 11, 11. Danube Properties.
5: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
6: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
5: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
6: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk. UK.
5: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
7: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
8: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
7: ये तो बताओ, कोई पता चला?
8: गुरु गुरु,
9: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
7: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
9: शीघ्र शीघ्र। क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन द 6th of November.
10: To book call 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
13: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
14: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
15: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
14: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
15: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटवुड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।

0: हल्का याग्निक और सानू दा की आवाज में फिर तेरी कहानी याद आई। फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक कैफी आजमी साहब से जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शन, जल्दी से सुन लीजिए जो लोग नहीं सुन पाए हैं। जिन ऑप्शन में से एक को आपको चुनना है उसे वोट की तरह कास्ट करना है। बहुत सारे वोट्स हम तक रिसीव भी हुए हैं लेकिन बाद में आंकड़ा बदल सकता है। ऑप्शन ए है ये मौसम भीगा भीगा है, फिल्म का नाम है धरती। ऑप्शन बी सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, जवानी दीवानी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत है। और ऑप्शन सी है ये जो मोहब्बत है उनका है काम, फिल्म का नाम कटी पतंग। अपने अपने वोट कास्ट करते रहे, अभी तक है वोटिंग लाइन्स ओपन।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: Chala jaye phoolon ka shabab usme phir

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Shokhiyon mein ghula jaye, Prem Pujari film ka Lata ji aur Kishore Da ki awaaz mein pyara sa geet, lekin aap kisi bhi shokhiyon mein kho mat jaye, apne apne vote cast karte rahe. Agla gana aa raha hai Rafi saab ki awaaz mein, abhi tak hain voting lines open.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
2: लाइक अ रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन. डिटेल्स एट laikaradio.com.
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: भाई बात बिल्कुल सही है, आप जिंदगी का साथ निभाइए, जिंदगी आपका साथ निभाएगी। अगला गीत हम आपको सुनाकर आपका साथ निभाएंगे। मुकेश साहब लता जी की आवाज में अगला गीत आने वाला है, उसके बाद बंद हो जाएंगी आज के लिए आज की वोटिंग लाइंस, इसलिए आखिरी है, मौका लगाते रहिए चौका।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: The movie is starting. Turn off your phones.
4: Ah, very smart. The mobile have already completed its destinies.
5: Destinies? What destinies?
4: Bringing everyone to the movies. Because I decide people only need to download the app to get 2-for-1 cinema tickets every Tuesday or Wednesday. I amaze myself.
3: Alexander, phone off.
4: Get the Compare the Market app to enjoy 2-for-1 cinema tickets.
6: Participating cinemas, 2 standard tickets, cheapest free. Only on Tuesdays or Wednesdays, ends 19th of July 2027. T's and C's apply.
7: Ye hai Leica Gold.
8: Leica Gold.
9: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
10: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
9: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: विजिट TravelHubWorld.com।
11: Oh, look at that bump. You're glowing.
12: Oh, thanks.
11: Have you had your whooping cough and RSV vaccines yet?
12: Oh, no, not yet.
11: Definitely get both. My niece caught RSV after she was born. It was awful.
13: RSV and whooping cough can cause serious illness in young babies. Being vaccinated during pregnancy passes on immunity and helps protect your baby in their first months of life. Speak to your midwife or GP practice. Stay strong. Get vaccinated. Search nhs.uk/pregnancy vaccinations.

0: मुकेश साहब, लता जी की आवाज में धरती कहे पुकार के का ये खूबसूरत सा गीत आपको हमेशा लाइका नेटवर्क पर सुनने को मिलता है। लेकिन इसी साथ आपको बता दें कि भाई आज के लिए हो चुकी हैं वोटिंग लाइंस बंद और चुना जा चुका है भारी मतों के साथ आज का गोल्डन राग। देखते हैं क्या है सरप्राइज आप सबके लिए।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly.

0: किशोर दा की आवाज में ये जो मोहब्बत है फ्रॉम द फिल्म कटी पतंग, फिल्म का गाना बना है आज का गोल्डन राग। बिना वक्त गवाए जल्दी से लेते हैं नाम जिन लोगों ने इतना प्यार दिया है इस गाने को। मीना शाह जी, जगदीश जी, राजकुमार साहब, उल्लास जी, हंसा वोरा जी, हंसुमती जी, जया फ्रॉम ल्यूटन, किशोर लाडवा, अयूब चौहान साहब, रानी सुना है, विजय गुनोवा जी, हंसा मिस्त्री जी, हरप्रीत जी। बार बार इनको गुड आफ्टरनून का मैसेज कर देता हूँ जबकि इनकी यहाँ हो रही होती है गुड मॉर्निंग। सोहबत खान जी, अर्जुन साहब, अमित पटेल जी, शकु जोशी, पंकज, सुमित चौरसिया, सालिम अख्तर एंड तरला मुजारिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कल तक अब आपसे कल तक के लिए लेता हूँ इजाज़त। कल होगी आपसे मुलाकात सुपर संडे वाली महफिल में। नेक्स्ट आ रही हैं सरिता जी। सुनते रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।
1: This is Like a Gold. Do you know you can open your NRE and NRO account from the comfort of your home by requesting us for a home visit? You can also visit any ICICI Bank UK branch or call us at 0344 412 4444. You will be transaction ready with immediate access to a debit card and a checkbook. Just reach out to ICICI Bank UK and they have a solution for your banking in the UK or in India. ICICI Bank UK.
2: ICICI Bank UK is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
3: NRI products and service are subjected to Reserve Bank of India and applicable laws in India. TNCs apply.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: लंदन, गेट रेडी for an unforgettable night.
6: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
5: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
6: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
5: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
6: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
5: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Sunshine, skyscrapers and souks
9: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
8: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
9: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
8: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
9: Southall Travel. At all protected.
10: Two businesses,
11: same town,
10: same service.
11: One appears on page one of Google,
10: the other doesn't.
11: Guess which one gets the customer?
10: The truth is brutal.
11: The first page of Google gets the business.
10: Everyone else gets what's left.
11: So here's the real question.
10: When your customers search for what you sell, do they find you?
11: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
10: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
12: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
13: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra.
14: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
15: Next, Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Like a Gold.
16: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Like a Gold. Make it a date.

0: प्यार से भरे दो गीत, इतने प्यारे, इतने मीठे गाने। और प्यार में ऐसा ही होता है ना, एक दूसरे से हम वादा लेते हैं, एक दूसरे की कसम खाते हैं और कहते हैं कि हम तेरे बिना नहीं जी पाएंगे। बहुत ही प्यारे से गीत थे। अब गीत कहाँ से लिए, कौन सी फिल्मों से थे, ये जानकारी ज़रूर दूंगी, लेकिन पहले ज़रा आपसे जान लूँ कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। By any chance, if you're not feeling too well, get well soon. If you're feeling a bit down, तो come on, cheer up. Life is to live, life is to enjoy. जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए ये गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता, सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। आपके मन को भा जाए तो मुझे इशारा चाहिए आपकी तरफ से। वैसे दोनों के दोनों गीत आपको बहुत पसंद आए, ढेर सारे मैसेजेस मेरे सामने ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जिसके लिए तहे दिल से मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। और अब बता दूं कि ये दोनों गीत मैंने किन फिल्मों से चुने थे। पहले गीत को मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म प्रेम अगन। प्रेम अगन किस किस ने फिल्म देखी है? नहीं देखी तो मैं बता देती हूँ कि दिस फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय फिरोज खान, रिटन बाय फिरोज खान, प्रोड्यूस्ड बाय फिरोज खान, और उन्होंने अपने बेटे फरदीन खान के साथ ये फिल्म बनाई थी। मेघना कोठारी थी इस फिल्म की हीरोइन और साथ में अनुपम खेर भी थे। अन्नू मलिक का संगीत था और आपने गाना ज़रूर इन्जॉय किया होगा, खाते हैं कसम। उदित नारायण एंड साधना सरगम ने गाया था इस गीत को एंड सुदर्शन फाकिर ने लिखा था इस गाने को। और दूसरा गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म घायल। घायल आप सभी जानते होंगे कि राजकुमार संतोषी जी ने बनाई थी, उन्होंने ही स्क्रीन प्ले लिखा था एंड डायलॉग्स थे दिलीप शुक्ला के, राजकुमार संतोषी जी ने ही स्टोरी लिखी थी एंड धर्मेंद्र जी ने भी इसे प्रोड्यूस किया था एंड फिल्म में काम किया था सनी देओल ने, मीनाक्षी शशौद्री थी, अमरीश पुरी थे, ओम पुरी थे, कुलभूषण खरबंदा थे, शफी मानदा थे, मौसमी चैटर्जी थी एंड राज बब्बर का भी स्पेशल रोल था एंड इस फिल्म का संगीत भी पप्पी लहरी साहब ने दिया था। एंड बता दें कि सनी देओल पहली चॉइस नहीं थी राजकुमार संतोषी जी की, पहली जो चॉइस थी वो थी कौन आप जानते हैं? वो चाहते थे ये इस फिल्म में काम करें कमल हसन, लेकिन कमल हसन ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। देन साथ में ये भी हुआ कि उनको लगा था कि उनकी हिंदी डिक्शन इतनी अच्छी नहीं है तो शायद फिल्म ना चलेगी। फिर उन्होंने मिथुन जी से बात की, बट धर्मेंद्र जो जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था उन्होंने राजकुमार संतोषी जी से कहा कि प्लीज़ आप सनी देओल को लेकर ये फिल्म बनाएं, और मिथुन को कहा कि इस प्रोजेक्ट को छोड़ दें। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग से सनी देओल ने इस फिल्म में काम किया और ज़बरदस्त काम किया, बहुत अच्छा काम किया था। इस फिल्म के गाने सभी मशहूर हुए थे, लेकिन सोचना क्या, वो गाना काफ़ी मशहूर हुआ था जिसे इंदिवर जी ने लिखा था और लंबाडा ट्यून पर बना था, ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये गीतों की तो इन्फॉर्मेशन ले ली, अब ज़रा ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हो जाए।
1: UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, we SBI UK वाले आज आपके पैसे अगर ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिल सकते हैं 126 रुपीस एंड 50 पैसा अगेंस्ट 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड। काम बड़ा आसान है, किस तरह से आप ट्रांसफ़र करेंगे, यू कैन वॉक इन टू द ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑलवेज देयर।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: भाई मेरे बहुत से साथी अब मैसेजेस भेज रहे हैं, थैंक यू फॉर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे एज वेल, थैंक यू, ओवर हो गया भाई, ख़त्म बर्थडे, थैंक यू आपका। एनीवे सहर, थैंक यू आपका भी, बड़ा प्यारा सा मैसेज आपने लिखकर भेजा है एंड आप कौन हैं, आपका नाम नहीं समझ आ रहा है मुझे, एस कासमी साहब, थैंक यू आपका भी। एंड भरत गंगाराम जी, आपने गुलाब जामुन भेजे हैं, थैंक यू सो मच। और प्रणाम, नमस्कार, सरिता जी वेलकम एंड थैंक यू। और रमीला पटेल हैरो में सुन रही हैं प्रोग्राम और आपने लिखा, सरिता बहन, टुडे इज़ माय सिस्टर्स बर्थडे, सो प्लीज़ प्ले अ नाइस सॉन्ग फॉर हर, लव फ्रॉम सचिन, राखी, अनिश, अने बेला एंड विहान, मीरा और भाविक की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे लिखती हैं, सॉरी आई फॉरगॉट सिमी'ज नेम, प्लीज़ इंक्लूड द नेम। यस थैंक यू, सिमी का भी नाम ले लिया हमने, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो आपकी सिस्टर को। अब सबके नाम लिखे हैं, लेकिन लिखे टुडे इज़ माई सिस्टर्स बर्थडे, सो प्लीज़ प्ले अ नाइस सॉन्ग। सिस्टर का नाम लिखना भूल गई हैं जिनका बर्थडे है, चलिए कोई बात नहीं। हरप्रीत सिंधु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने भी पहचान लिया क्या कॉमन है। इंतशाब, यू आर इन्जॉइंग द शो एंड थैंक यू। आपका उल्लास जी, अर्जुन जी, भारती जी, आप सभी पहुँच चुके हैं, थैंक यू। और बाकी के मैसेजेस में बाद में ज़रूर शामिल करूँगी। विजय गुजरी, आप भी हैं हमारे साथ साथ। रमीला जी, आप भी हैं मेरे साथ सहर। सो सोहबत खान, दिनेश पोपट जी पहुँच चुके हैं, आप सभी थैंक यू।
1: This is Sarita Sabharwal on Leica Gold. Leica Gold. 07300998823. Note kiya? Kitty party? Business meeting? Corporate event? Family occasion? Bas WhatsApp kare Godfather and Co. Bar and Kitchen Co. Service excellent. Food amazing और experience ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी recommend करेंगे। Vivek House, Watford. Book on WhatsApp 07300998823.
2: ICICI Bank Money to India, which is trusted by millions across 16 countries, is now in the UK.
1: Wow! So sending money to India is instant.
2: Yes, from any bank in the UK to any bank in India. Real time exchange rates, round the clock support. Not only this, we also get a preferential rate and zero fees on our first 5 transfers.
1: Download ICICI Bank's Money to India UK app today from the Play Store or App Store. ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA. Terms and conditions apply. Start touring.

0: कसम ली। आपने कसम ली, मैंने कसम ली, कभी होंगी ना जुदा हम तुम, और इसी तरह से हम सब का भी प्यार बना रहे। सोबत, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज। एंड मंजीत, आप भी सुन रहे हैं, थैंक यू आपका भी। और बता दूं कि ये गीत पिक्चराइज हुआ था देव साहब पर, और साथ में थी मुमताज़। वैसे इस फिल्म में बहुत प्यारा रोल था जीनत अमान का भी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस जीनत अमान भी थी इस फिल्म में। एंड मुमताज़ के साथ ये गाना पिक्चराइज हुआ था देवानंद जी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तेरे मेरे सपने में जीनत नहीं थी, नहीं, सिर्फ मुमताज़ थी। और मुझे उम्मीद है कि गीत आपने पसंद किया। आप तक पहुँचाया किसने?
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ।

के चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे

0: के जलोगे आत्म लोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: भी ऐसे गीत आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं सुनने को मिलते हैं। लाइक रेडियो नेटवर्क को किसी भी जरिए से आप हम तक पहुंचे हैं, आपका स्वागत, आपका खैर मकदम है। वी आर अवेलेबल ऑन 1035 AM, DAB, अलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com, ब्रेडफर्ड, लीड्स, मैनचेस्टर, बर्मिंगम, लंदन एंड ग्रेटर लंदन, जहां भी हैं आप, जिस भी हाल में हैं और जिस भी जरिए को आपने चुना है, उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम आप इंजॉय कर रहे हैं, वैसे आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिल रहे हैं।
1: Sarita Sabharwal, Weekend Classics.
2: Remember this one? Sanam Teri Kasam, 1982 की फिल्म थी। जिस जिस को पसंद है अपने नाम कर लीजिएगा। सुदेश टक्यार जी, थैंक यू। केशव, राकेश अहूजा, थैंक यू।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 02087677627.
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: प्यार की कसम है, न देख ऐसे प्यार से।

0: आशु भोसले एंड मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ें शामिल रही। उम्मीद करती हूँ गीत सारे के सारे आपको पसंद आ रहे हैं, वैसे आपके मैसेजेस तो यही बता रहे हैं।
1: Updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: भाई आज पैसे एक्सचेंज कराना चाहते हैं LemFi के जरिए तो बता दें इंडियन रुपीज़ एक पाउंड के बदले मिलेंगे, वन ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले 127 रुपीज़ एंड 53 पैसा, अफगान अफगानी से 85.93, पाकिस्तानी रुपीज़ 366.72, बांग्लादेशी टका 162.92, श्रीलंकन रुपीज़ 437.80 एंड US dollars 1.32.
1: Like radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. Like Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Right, gold ka rate 100 pounds and 60 paisa per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.
2: Leica Gold.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today.

0: फिल्म गबन से चुना था मैंने इस गीत को और उम्मीद करती हूँ कि गीत आपने पसंद किया। और अगला गीत भी बहुत खूबसूरत है जो हमें पहुँचाएगा न्यूज़ तक। थोड़ी सी इसमें उदासी है ये कह सकती हूँ, या फिर ये कह सकती हूँ कि इसमें थोड़ी सी शिकायत।
1: This is like a gold. Reminisce those classics.
2: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., Like a Gold and Like a Radio Midlands.

0: हमारा दिल है। What a beautiful song। आपने बैक टू बैक दो गाने सुने और उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपको पसंद आए। 77th birthday पर भारतीय सिनेमा के वॉर ड्रामा किंग जेपी दत्ता साहब को हार्दिक बधाई। वो निर्देशक जिसने थार के तपते रेगिस्तान को वीरता और अमर कैनवास बना दिया। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आई है आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। क्या बात है, ऐसे गीतों की और ऐसे किस सिचुएशन पर गाना लिखा और फिल्म बॉर्डर में कमाल किया था जेपी दत्ता साहब ने। जब 1997 में सिनेमा घरों में अंधेरा छाता था और पर्दे पर लौंगेवाला की तपती रेत के बीच भारतीय फौजियों की वर्दी पर पसीने की बूंदें चमकती थी, तो सिर्फ एक फिल्म नहीं चल रही थी, हर देखने वाले के सीने में देश प्रेम का वो तूफान उठ जाता था जो सीधे आंखों से आंसू बनकर निकलता था। आपको याद है, ये जेपी दत्ता साहब का कमाल था। महान फिल्मकार का नाम है ज्योति प्रकाश दत्ता, यानी कि जेपी दत्ता। इन्हें नेशनल अवार्ड विजेता रहे हैं और दिग्गज निर्देशक और निर्माताओं में इनका नाम हासिल है। आज उनका 77th बर्थडे है और आज ही के दिन वो अपनी धर्म पत्नी के और प्रसिद्ध अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी के साथ अपने वैवाहिक जीवन की 41st वर्षगांठ भी मना रहे हैं। सो हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ देम, जे पी दत्ता साहब एंड बिंदिया गोस्वामी। और 3rd अक्टूबर 1949 में इनका जन्म हुआ था। भारतीय सिनेमा को इन्होंने भव्यता और बारूदी सच्चाई और वो इंसानी जज्बात दिए जिसकी मिसाल पूरे उपमहाद्वीप में नहीं मिलती है। राजस्थान की माटी बहुत बहुत प्यारी फिल्में दी हैं एंड गुलामी इनकी 1985 में फिल्म बनी थी जिसका गीत आपने सुना अभी अभी। एंड बतौर निर्देशक उनकी पहली ही फिल्म ने सिनेमा का मिजाज बदल दिया था। धर्मेंद्र मिथुन चक्रवर्ती और नसीरुद्दीन शाह के साथ उन्होंने राजस्थान की सामंती अत्याचार और जातिगत भेदभाव और बगावत कि ऐसी कच्ची और खुरदरी दास्तां पेश की थी जिसने उन्हें रातों रात बड़े निर्देशकों की कतार में खड़ा कर दिया था। इसके बाद हथियार 1989 में, बंटवारा 1989 में, क्षत्रिय 1993 में बनी थी और इन फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि मल्टी स्टारर फिल्मों में हर किरदार को पूरा वजन, थारदार संवाद और विशाल बैकग्राउंड कैसे दिया जाता है। देन फिर आई थी 1997 में भारतीय वॉर सिनेमा का वो क्या कहेंगे एवरेस्ट जिसे कोई ना छू सका ना छू सकेगा, अब तो बॉर्डर टू भी बन गई। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बैटल का वो इसमें दर्शाया गया था। बहुत बहुत सारी बातें हैं जो बताना चाहूँगी लेकिन बस वक्त है कि तेज़ी के साथ दौड़ता है तो मैं इस बातचीत को यहीं रोकती हूँ और मैं जेपी दत्ता साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनकी वर्षगांठ पर। और बिंदिया गोस्वामी, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई एंड बिंदिया गोस्वामी बहुत स्वीट एंड बहुत डाउन टू अर्थ, मैं कहूँ कि हीरोइन रही हैं या डाउन टू अर्थ थी उनकी पर्सनैलिटी भी, तो उनसे मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा था। एनीवे उनकी भी एक फिल्म का गीत आ रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। उन दोनों को हम शादी की सालगिरह पर भी ढेरों बधाई देते हैं। इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग योर एनिवर्सरी या अपना बर्थडे मना रहे हैं तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके लिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर SBI UK के जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी तो काम बड़ा आसान है। यू कैन वॉक इन टू द ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन, SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑलवेज देयर और आज आपका 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड कैन गेट यू 126 रुपीज एंड 50 पैसा।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank.com. Bank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Just dropped. The brand new TUI Smiles Rewards Club. Join for free today to unlock exclusive members-only deals, personalised rewards, and chances to win amazing prizes. Get even more from your holiday. Join for free today. TUI. Big rewards, big smiles. Atoll and Avta protected. T's and C's apply. See website for details.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a
3: Gold. Hi, clairvoyance here. How may I be of prediction?
4: I'm wondering about my future retirement.
3: You and me both. Well, I'm seeing an app. The HMRC app. You open it and there it is. Your state pension forecast.
4: What about gaps in my national insurance record?
3: Well, you can see and fill those. Oh, and it's handy for tax refunds.
4: Right, thanks.
3: The pleasure's yours. Now download the HMRC app for your money and tax. You're on it.
5: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
6: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
5: रात 8 बजे से टिल लेट डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल
6: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा
5: कॉल प्रथम पटेल 07838302450
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Da New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Da New Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.

0: बिंदिया गोस्वामी पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। फिल्म का नाम था खट्टा मीठा। यस, यही था फिल्म का नाम, खट्टा मीठा। और इस फिल्म से आपने ये इस गीत को सुना जिसमें दो आवाज़ें शामिल थी, किशोर दा एंड लता मंगेशकर जी की। बिंदिया गोस्वामी जी की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, जेपी दत्ता साहब का बर्थडे भी है, तो हम दोनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बिंदिया वॉज डिस्कवर्ड एट अ पार्टी वैन शी वॉज अ टीनेजर बाय हेमा मालिनीज मदर एंड शी फेल्ट दैट बिंदिया हैड अ रिजेम्बलेंस टू हेमा मालिनी एंड शी रिकमेंडेड हर टू फिल्म प्रोड्यूसर्स। और बिंदिया को फर्स्ट ब्रेक मिला जीवन ज्योति में ऑपोजिट विजय अरोड़ा। एंड उसके बाद दो फिल्म इतनी नहीं चली थी, लेकिन बिंदिया की गाड़ी चल गई थी और इन्हें सक्सेस भी मिली। एंड शी मेट डायरेक्टर बासु चैटर्जी, जिनकी फिल्म खट्टा मीठा में 1977 में इन्होंने काम किया। उसके बाद प्रेम विवाह इन 1979। हर बिगेस्ट हिट वॉज ऋषिकेश मुखर्जीज गोलमाल इन 1979 एंड द सक्सेस ऑफ दादा एज वेल इन 1979। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। शी वॉज फर्स्ट मैरिड टू लेटर टू साइन अ नंबर ऑफ फिल्म्स विद विनोद मेहरा एंड शी ऑल्सो बैक रोल ऑपोजिट शशि कपूर एंड बिग बजट फिल्म विद जो इन्होंने बनाई थी, जिसमें इन्होंने काम किया था इन 1980 एंड द फिल्म नेम वॉज शान। एंड देन शी चेंज हर करियर एंड शादी के बाद, और इन्होंने फिर अपने हस्बैंड की ही फिल्मों में फीमेल जो थी उनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग शुरू की, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का। एंड शी डिज़ाइन फॉर रानी मुखर्जी, करीना कपूर, ऐश्वर्या राय फॉर हर हस्बैंड्स फिल्म्स। जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर में इन्होंने सभी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे। रेफ्यूजी के इन 2000 एंड देन एलओसी कारगिल एंड आल्सो उमराव जान एंड दैट्स इट। एंड इनकी दो बेटियां हैं और जेपी दत्ता इनके हस्बैंड हैं। और बहुत सारी फिल्मों में वैसे इन्होंने काम किया, लेकिन मैं और गीत इनकी फिल्मों के नहीं बल्कि कुछ क्लासिक हिट गाने अब शामिल करने जा रही हूँ। बता दूँ खट्टा मीठा का गीत आप तक किसने पहुंचाया?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Like a Gold. Tasty track of the hour brought to you by

0: वन ऑफ माय फेवरेट्स, और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इस गीत को ज़रूर इंजॉय किया होगा और इंजॉय किया साथ साथ गाया भी होगा। किस किसने गाया ज़रा हाथ खड़े करके बता दें। सरिता हाथ खड़ा करेंगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बता दीजिए कि आप सुन रहे थे, इस गीत को खूब इंजॉय किया एंड आपने साथ साथ इसके गाया भी। अब मुझे एक मैसेज मिला है और जिसमें शौकत साहब ने लिखा कि ताजमहल का गाना सुना दें। चलिए मैं वो गाना सुनाती हूँ, लेकिन पहले बता दूँ ये जो गीत अभी अभी आपने सुना वो आप तक किसने पहुँचाया।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। Sarita Sabharwal with your weekend classics.
0: तो शौकत साहब का कहना है कि सरिता आज 3/10/1678 में आज ताजमहल कंप्लीट हुआ था, तो इस खुशी में ताजमहल का गीत ज़रूर सुनवा दें। तो आ रहा है गाना, आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लूं। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, क्रेज़ी फॉर किशोर हैं तो दिवाली स्पेशल फीचरिंग द मोस्ट मेलोडियस ट्रैक्स ऑफ किशोर कुमार, अ ट्रिब्यूट नाइट विद द 515 लाइव बैंड ऑन फ्राइडे 6 नवंबर एट द प्रिंस रिजेंट होटल, एंड टिकट्स एट eventbrite.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर हैं कौन? लाइका रेडियो नेटवर्क, लाइका गोल्ड रेडियो। एंड साथ ही ये भी बता दूं कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब आ रहे हैं विद हिज सन, एंड दोनों परफॉर्म करने वाले हैं ऑन और ट्रिब्यूट दे रहे हैं वो 30th डेथ एनिवर्सरी पर टू नुसरत फ़तेह अली खान साहब। वन डे टू ओनली संडे 18th अप्रैल 2027 को आएंगे। अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन टिकटें आप अभी से बुक करा लीजिएगा। एंड रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो।
1: सरिता सबरवाल, द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका गोल्ड।

क्या बात है, रोशन जी की संगीत पर मोहम्मद रफी साहब एंड लता जी की आवाजें आपने सुनी फ्रॉम द फिल्म ताजमहल। शौकत आपके नाम भी क्या हना, आपने भी ज्वाइन किया, हरप्रीत सिद्धू जी, विजय गुदरी, अमिता जी रानी फ्रॉम

0: Right from fostering versus adoption and the approval process to financial support and the support available to carers, the episode gets into the questions people often have it but don't know what to ask, who to ask. So ye sab janne ke liye aapko क्या करना है, एक्स्ट्रा हमारा देखना है लाइक आ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट एपिसोड 36 होस्टेड बाय रूबी रजा एंड लाइक आ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
1: लाइक आ एक्स्ट्रा इज हियर. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव.
2: The movie is starting. Turn off your phones.
3: Ah, very smart. The mobile have already completed its destinies.
4: Destinies? What destinies?
3: Bringing everyone to the movies. Because I decide people only need to download the app to get 2-for-1 cinema tickets every Tuesday or Wednesday. I amaze myself.
2: Alexander, phone off.
3: Get the Compare the Market app to enjoy 2-for-1 cinema tickets.
5: Participating cinemas, 2 standard tickets, cheapest free. Only on Tuesdays or Wednesdays, ends 19th of July 2027. T's and C's apply.
6: ये है लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com. कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com.
7: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
7: विजिट ट्रेवल हब world.com.
8: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
9: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
11: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
10: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
12: ब्रांड्स दैट यूज रेडियो आर 49% मोर लाइकली टू गेट नोटिस्ड. एम्प्लीफाई योर एडवर्टाइजिंग एट radiocenter.org. Assuming you want to get noticed.
13: Share festive sweetness with Haldiram's.
14: Kaju Katli, Coconut Barfi, Gulab Jamun, Mysore Pak, Milk Cake, Rasgulla and more. A taste of home.
13: Shop at HaldiramUK.com or at your nearest grocery store.
14: Haldiram's.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: फिल्म का नाम था मैं चुप रहूंगी। चुप कहाँ रहे हैं दोनों ने अपने दिल की, दिल के प्यार को, दिल के किस एहसास को किस तरह से आप सबके सामने लेकर आए, कितना प्यारा गीत गाया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस गीत को ज़रूर इंजॉय किया होगा। आपके मैसेजेस बहुत सारे मिल रहे हैं हरप्रीत सिद्धू, थैंक यू आपका भी बहुत बहुत। एंड आप हैं कुदरत, आपका मैसेज अभी अभी मिला है। कुदरत, कुदरत थैंक यू सो मच आपके प्यारे से मैसेज के लिए। आपने लिखा है टुडेज लिस्ट ऑफ सॉन्ग यू आर प्लेइंग अमेजिंग, बिग थैंक यू असफा एंड फ्रॉम मिचम्स। आपने मैसेज भेजा फर्स्ट टाइम आई थिंक, थैंक यू सो मच। अमिता जी आपका भी, रानी ऑफ फर्स्ट लव, विमल रायन जी, देश बसंत जी, देशराज बसंत जी, आप सब बड़े प्यार से प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 127.13, Afghan Afghanis 85.96, Pakistani rupees 365.42, Bangladeshi taka 162.89 and Sri Lankan rupees 437.73 and US dollars 1.32.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold. LIKA Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold rate is £100.60 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 to 1 PM।
3: ये है लाइका गोल्ड।

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। जब प्यार किसी से होता है फिल्म से चुना था पहला वाला गीत, सलमान खान एंड ट्विंकल खन्ना ने इस फिल्म में काम किया था। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में गाए हुए ये गीत हमने आप तक पहुँचाए ऑन लाइक रेडियो नेटवर्क के जरिए। जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं आपका स्वागत, आपका खैर मकदम है। बता दें कि मेरी बात आते हैं कौन, चार से सात मेरा साथ, तो सात बजे के बाद आते हैं सैंडी शाह, तो उनका साथ दीजिएगा। एंड उनके प्रोग्राम का नाम है विंटेज गोल्ड, ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे गीत होते हैं उनके प्रोग्राम में शामिल, और वो जब जाते हैं देन गोल्ड नाइट्स शुरू हो जाती हैं। ओवरनाइट सर्विस में आप बैक टू बैक गाने सुनते हैं, बहुत खूबसूरत गीत। देन ब्रेकफास्ट शो शुरू होता है, वीकेंड पर ब्रेकफास्ट में आते हैं दीप राजा, दीप राजा के बाद रितु शर्मा, रितु शर्मा के बाद फिर अनुराग, और अनुराग के बाद फिर मेरी बारी आ जाती है। तो सैटरडे एंड संडे मैं आपसे मिलने आती हूँ 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। उम्मीद करती हूँ मेरा साथ आपको पसंद आता है। ये बैक टू बैक जो दो गाने सुने उसमें पहला गीत तो था जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, जो 1998 में आई थी। इस फिल्म के सारे गाने बड़े ज़बरदस्त थे। एंड दूसरा गीत आपने आशा जी की आवाज़ में सुना, फिल्म का नाम था लूटमार, 1980 में आई थी ये फिल्म। और भी इनके जादू का क्या कहें, लता जी हों या आशा भोसले, इनकी आवाज़ का जादू तो हर जगह बोलता है, हर जगह। और मेरे साथ ही बराबर मुझे मैसेजेस लिख रहे हैं और कुछ के नाम मैं नहीं जान पा रही हूँ। सो हाय सीता जी, आई जस्ट कुंट हेल्प टेलिंग यू टुडे हाउ मच आई लाइक योर वॉइस, ओ माय गॉड, एंड योर चॉइस ऑफ सॉन्ग्स, एंड आई फाइंड योर वॉइस वेरी सॉफ्ट एंड थेरेप्यूटिक। थैंक यू सो मच। और आप कौन है ज़रा जान लें, मैं भी मुझे पता चलना चाहिए ना। आप हैं ईशा, ईशा थैंक यू सो मच आपके लवली काइंड वर्ड्स के लिए। एंड ज़हीर खान साहब कराची में आप सुन रहे हैं और आपने कहा कि बहुत अच्छे लग रहे हैं गाने, और आपने लिखा कि कुछ दिन पहले आपका बर्थडे था, तो बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच आपके बेस्ट विशेस के लिए। एंड विजय गुत्रई जी, आपके सभी मैसेजेस मुझे बराबर मिल गए, थैंक यू। अरुणा, भूपेंद्र पटेल जी अभी आई हैं, आंटी जी आप भी अभी आई हैं, हरप्रीत सिद्धू ने भी कितने सारे मैसेजेस भेजे, और आप हैं कौन, कुदरत, थैंक यू आपका भी, अमिता जी, वैक्की, सबके नाम मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी। विमल रायन जी ने और मैसेजेस भेजे, रानी जी ने और मैसेजेस भेजे, हना थैंक यू सो मच, एंड प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पूरन कपूर साहब आपका भी, एंड सुदेश टकियार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दो गीतों में से एक गीत आपने चुनना है। यस, आर्टिस्ट ऑफ द वीक है हमारे कैफी आज़मी साहब, उन्होंने इतने सारे खूबसूरत गीत लिखे हैं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा गीत आज के प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। पहला मैंने चुना हीर रांझा का गीत, 1970 की फिल्म थी, और गीत है मिलो ना तुम तो हम घबराएं। ये गाना सुनना चाहते हैं आप या फिर धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार फिल्म अनुपमा का। सो कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है, जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ए इस मिलो न तुम, और दूसरा बी है धीरे धीरे मचल। कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है, जल्दी से बताइए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: चलिए इनके जरिए पैसे आप इंडिया में कहीं भी भेजना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है। You can go into the branch and go online. SBI Yono mobile app अगर आपने डाउनलोड किया तो उसके जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। Terms and conditions are always there. और आज का रेट है 126 rupees and 50 paisas for 1 British sterling. Pound.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Life's full of moments worth hearing. Like that story Bob tells every time you get together. You've heard it before. You know how it ends. But hearing everyone laugh never gets old. With the Boots Hearing Care Plan from just £20 a month, you'll get personalised hearing technology, ongoing support and expert aftercare. Everything you need to stay connected to the people and moments that matter most. Book your free hearing test today at bootshearingcare.com. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: नवरात्रि माँ कृपा फाउंडेशन साथे गरबे घूमवा तैयार थई जाओ।
5: 10-19 ઓક્ટોબર दररोज सांजे 7-11 વાગ્યા સુધી गरबा અને દાંડિયાની રમઝટ ભારત થી પધારેલા કલાકારો સાથે।
4: ટિકિટ્સ મંડે ટુ થર્સડે એન્ટ્રી 5 pound, ફ્રાઈડે ટુ સન્ડે 7 pound। વેન્યુ માં કૃપા ફાઉન્ડેશન હોલ, ફર્સ્ટ ફ્લોર, યુનિટ 2, 10 સ્ટોનફિલ્ડ વે, સાઉથ રાઇસલિપ, HA40JS।
5: બુકિંગ માટે કોલ કરો રશ્મિ શાહ 0772-287-5090।
4: એ હાલો ગરબે રમવા।
6: I can't wait for our holiday. Sun, sea, no work.
7: Same, but how are we supposed to use our phones abroad? Roaming costs a fortune.
6: Not with SIMZY. You get data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
7: And I can keep my number for WhatsApp and bank OTPs. Exactly. Plus, it's flat rate, so no bill shock, and you're ready in just 3 minutes.
6: Brilliant. And there's 10% off with Roam Free 10.
7: SIMZY, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at SIMZY.com. Terms apply.
8: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
9: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
10: Sunshine, skyscrapers and souks.
11: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
10: Flying direct with Emirates, so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
11: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208-843-4444 or visit southalltravel.co.uk now.
10: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
11: Southall Travel. At all protected.
12: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
13: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
12: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
14: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
15: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
16: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
17: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
18: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: राइट भी गीत आपने सुना, क्योंकि ज़्यादातर मेरे साथियों ने इसी गीत की फरमाइश की थी। गैरी बराट जी, अर्जुन जी, मीना शाह, उल्लास फ्रॉम टोरंटो, दिनेश पोपट जी, मंजू जी, विजय गुजरी एंड नौशीन खान, अर्जुन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है मैंने किसी का नाम मिस भी किया हो, उनसे माफ़ी चाहती हूँ। और क्योंकि मैं उनको भी निराश नहीं करना चाहती जो जिन्होंने ए कहा कि वो गीत सुनना है, तो वो गीत भी आ रहा है आपके लिए, आइए सुनते हैं। लेकिन बता दूं, ये अनुपमा का गीत बहुत खूबसूरत था। गाने सभी इस फिल्म के हेमंत कुमार साहब ने कंपोज़ किए थे और गीत लिखे थे कैफ़ी आज़मी साहब ने। इस फिल्म के बाकी के गीत कुछ दिल ने कहा, देन भीगी भीगी फ़जा, देन क्यों मुझे इतनी खुशी, वो वाला गीत, ये दिल यहाँ दिल की सुनो दुनिया वालों, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सारे गाने बहुत खूबसूरत थे। शर्मिला टैगोर एंड धर्मेंद्र ने इस फिल्म में काम किया था।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DerryValley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: और गीत आप सुन रहे हैं, सारे बहुत खूबसूरत गीत हैं. मैंने सोचा कि क्यों ना हम उन्हीं के यानी कि कैफी आसमी साहब के ही लिखे कुछ गीत आप तक पहुंचा दें. तो अगला गीत भी उन्हीं का लिखा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप इस गीत को भी ज़रूर पसंद करेंगे. और ये गीत मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म दो दिल. आपको याद है ये फिल्म? नहीं. गाना कौन सा हो सकता है? नहीं यार, चलिए सुनते हैं.
0: Reminisce those classics on Leica Gold.

0: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
1: जी हाँ, आपको बता दें साउथ हॉल ट्रैवल वालों का ये प्यारा सा मैसेज, और आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं. साउथ हॉल ट्रैवल इज़ अफोर्डेबल दुबई ऑफर कंबाइंस एक्सक्लूसिव डील्स एट सेलेक्टेड पार्टनर होटल्स विद द डायरेक्ट फ्लाइट्स विद एमिरेट्स from just £629 per person for 3 nights and travel by 10th December. Call South All Travel on 0208-843-4444 or visit southalltravel.co.uk.
0: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Whether you're catching up with friends in a busy cafe or enjoying a walk with a loved one on a windy day, at Boots Hearing Care, we're introducing our most powerful hearing technology yet. It automatically adapts to your surroundings, helping reduce distracting background noise so you can focus on hearing the moments worth hearing. Book your free hearing test today at bootshearingcare.com. Terms and conditions apply. See website for details.
3: ये है Leica Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
4: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट travelhubworld.com.
5: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
6: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
6: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 0192-3227274. बुक योर टेबल टुडे.
7: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से 1 से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से. स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर, 22 पामस्टन रोड, हैरो, HA37RR. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0208426-0678.
8: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
8: ये तो बताओ, कोई पता चला?
9: गुरु गुरु,
10: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
9: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है.
10: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
8: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
11: शीघ्र शीघ्र
10: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November.
7: टू बुक कॉल 0208-514-5400. Online at Eventbrite.
12: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
13: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.

0: What a beautiful, beautiful song and lovely lyrics by Kefi Azmi साहब. उन्हीं के गीत आज इस प्रोग्राम के सावर में बस अब सुनने को आपको मिल गए.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Koka Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
0: Right, we अब जरा ये काम भी कर लें.
1: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और LemFi वाले आज आपको रेट क्या क्या दे रहे हैं? Indian rupees against 1 sterling pound, 127 rupees and 25 paisas, 85.98 Afghan Afghanis, Pakistani rupees 366.53, Bangladeshi taka 162.88 and US dollars 1.32.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Leica Gold.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And it's £100 and 60 pence per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
4: Leica Gold.
0: और मेरे जिन साथियों ने बड़े प्यार से पिछले 3 घंटे से मेरा साथ दिया, उन सबका मैं बड़े प्यार से सत्कार करती हूँ और आपका थैंक्स करना चाहूँगी कि बड़े अच्छी तरह से आप मैसेजेस भी लिखते हैं और पूरी हर गीत के साथ साथ मुझे बताते रहते हैं कि ये गाना कैसा लगा उन्हें. थैंक यू एवर सो मच. अब मेरे जाने का वक्त है और सैंडी शाह के आने का वक्त है. सैंडी अपना शो विंटेज गोल्ड लेकर आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे ऑन लाइका गोल्ड एंड आप मैनचेस्टर रेडियो पर सुन पाएंगे अंकुर को. एंड दूसरी तरफ अभी हैं एनिका, लेकिन अब आएंगी इनके बाद कौन? सोनिया. सो उनका साथ दीजिए. मेरी आज की मुलाकात बस यहीं ख़त्म होने जा रही है, लेकिन एक और बहुत ही प्यारा सा गीत मैंने क्यू किया हुआ है जिसे आप सुनेंगे, इन्जॉय करेंगे, और वो गीत है फ्रॉम द फिल्म पाकीज़ा. जहाँ भी बैठे सुने, जिस भी ज़रिए से आप प्रोग्राम को इन्जॉय करें, हमारी बहुत सारी और सर्विसेज हैं लाइक 90s रेडियो, पंजाबी रेडियो, गज़ल वाला बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो आप सभी प्रोग्रामों को एंजॉय कीजिए. बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं ना यहीं पर. जी हाँ, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी 4 बजे की खबरों के बाद. बाय फॉर नाउ.

0: मुकेश की आवाज़, फिल्म का नाम था अंदाज, नौशाद के संगीत पर. वंस अगेन इफ जस्ट जॉइंड अस, वेरी गुड इवनिंग, दिस इज विंटेज गोल्ड, मायसेल्फ सैंडी शाह. होप यू आर एंजॉयिंग द म्यूजिक सो फार. सो आगे बढ़ते, आई हैव गॉट टू से थैंक यू, आई रिसीव्ड अ फ्यू ईमेल्स व्हाइल आई वाज अवे, बट आई हैव नॉट बीन एबल टू इंक्लूड योर रिक्वेस्ट्स दैट यू हैव आस्क्ड, सो आई विल डू दैट प्रोबब्ली फ्रॉम टुमारोज़ शो एंड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स. एंड अ रिमाइंडर टू यू, इफ देयर इज एनीथिंग स्पेशल यू वांट टू हियर ऑन विंटेज गोल्ड, प्रोवाइडेड इट फिट्स द बिल, देन सेंड मी एन ईमेल, sandy@leicagold.com, एंड आई विल एंडेवर टू इंक्लूड योर रिक्वेस्ट गोइंग फॉरवर्ड. आगे बढ़ते हुए एक बार फिर नौशाद का संगीत होगा, आवाज़ें नूर जहान और सुरिंदर की, फिल्म का नाम अनमोल घड़ी. फिर उसके बाद अ वंडरफुल सॉन्ग, रियली वंडरफुल सॉन्ग, एंड द आयरनी इज़ द नेम ऑफ द मूवी एंड द नेम ऑफ द सॉन्ग. सो फिल्म का नाम था गवैया और गाने के बोल हैं, ऐसे टूटे तार कि मेरे गीत अधूरे रह गए. तलत महमूद की आवाज़ है, ब्यूटिफुल सॉन्ग, हिडन absolute gem, never was a huge song. Film ka music kiya tha Ram Ganguly ne, and it's from 1954. Naturally I've never seen it, but the song is terrific. Enjoy.
1: Vintage Gold with Sandy Shah. Like a Gold. Feel good tracks all weekend with Sandy Shah on Like a Gold Greater London.

0: Vintage Gold every weekend with Sandy Shah.
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: The two fabulous voices of Uma Devi Osriya from Kanam Tadard. Right, so what's next? The legend, the Badshah himself, KL Saigal or Ameer Bhai Karnatki ki awaazein. Film ka naam tha Bhavra from 1944. That's really vintage. That's going back. Mausikar the Kemchand Prakash. It's a lovely song. Really, really nice song. Phir uske baad, again, it must be his day. Ghulam Muhammad ki sangeet par. Muhammad Rafi Saab aur Lata Mangeshkar on a truly, truly feel-good song. Film ka naam Ambar, 1952.
1: Feel-good classics all day. This is Laika Gold.
2: ये है
3: लाइका गोल्ड
4: ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम
5: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड
5: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम
6: बोले तूने क्या कर रहा है रे
7: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ
6: ये तो बताओ कोई पता चला
7: गुरु गुरु
8: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर
9: साधु तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
6: शीघ्र शीघ्र
8: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर
10: टू बुक कॉल 0208-514-5400 Book online at Eventbrite.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
13: You know how fans shout at football matches?
14: Oh, wake up!
13: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel good tracks all weekend with Sandy Shah on Leica Gold Greater London.

0: प्यार बिना जीवन है टोटल फ्लॉप। पुण्य पाप के चक्कर में कोई पढ़ के सके ना बच। क्यों रे चले झूठ कहा?
1: नहीं गुरुजी सच।
0: थैंक यू वेरी मच। मन को

0: भवसागर से वो तर जाएगा। मोटे अकल वाले ना समझे मेरी बात, बारीक है।
1: क्यों चले जी, गलत कहा?
2: नहीं गुरुजी, ठीक है।

0: Listen live and listen back to your favorite shows.
1: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर.

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

हो न हो किस्मत की बोहे की, नटिन में इस कदर हो कि मेरी मालूम हो बेटी।